0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेन्जी एफएम

0: इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्संग देपेम 95 मेगाहर्ज 95 मेगाहर्ज

0: नेशनल सिटी हॉस्पिटल
1: अत्याधुनिक सुविधा संपन्न भवन र प्रविधि सहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेशनल सिटी हॉस्पिटल
2: विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवाहरू
3: वरिष्ठ युरोलोजी एवं जनरल सर्जरी डाक्टर निर्मल लामिछाने र डाक्टर योगेन्द्र देवकोटा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति विधान र डाक्टर संगीता पौडेल
2: पेट कलेजो तथा आम्रा रोग विशेषज्ञ डाक्टर वरुण श्रेष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निर्मला लक्ष्मी श्रेष्ठ नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिलीप कर्मचार्य
3: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीपमान वैद्य र डाक्टर योगेश राज पन्त
2: महिलामा हुने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिनुमा श्रेष्ठ र डाक्टर मन्जु पाण्डे
1: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रौनियार
2: फिजिसियन डाक्टर गौरीराम महतो
1: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सेनाई
2: हार्ट जोर्नी नसा तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील अधिकारी
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर दामोदर तिवारी र डाक्टर किशोर उप्रेती
2: हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर शंकर बस्ताकोटी
1: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट डाक्टर प्रदेश घिमिरे मेक्सिलो फेसियल सर्जन डाक्टर गणेश चौधरी
3: इन्टरभेन्सनल पेन फिजिसियन डाक्टर विकास कुमार श्रेष्ठ
2: लगायत अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सम्पूर्ण उपचार नेशनल सिटी हस्पिटलमा नेशनल सिटी हस्पिटल हस्पिटल रोड भरतपुर सम्पर्क 0054 93 611
1: तपाईँको स्वस्थ जीवन सेवाका लागि प्रतीक्षामा नेशनल सिटी हस्पिटल

0: डॉक्टर संगीता पौडेल,
1: पेट कलेजो तथा आम्रा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण श्रेष्ठ, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला लक्ष्मी श्रेष्ठ, नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कर्मचार्य,
0: हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीपमान वैद्य र डॉक्टर योगेश राज पन्त,
1: महिला में हुने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीनुमा श्रेष्ठ र डॉक्टर मंजू पांडे,
0: कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोला रौनियार,
1: फिजिशियन डॉक्टर गौरीराम महतो,
0: मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सबिना सेनाई,
1: हाड़ जोड़नी नशा तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील अधिकारी,
0: बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दामोदर तिवारी र डॉक्टर किशोर उप्रेती,
1: हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकर बस्ताकोटी,
0: इंटरभेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदेश घिमिरे, मैक्सिलो फेसियल सर्जन डॉक्टर गणेश चौधरी, इंटरभेंशनल पेन फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार श्रेष्ठ
1: लगायत अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा संपूर्ण उपचार नेशनल सिटी हॉस्पिटल में। नेशनल सिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड भरतपुर, संपर्क 0956-93-611।
0: तपाईको स्वस्थ जीवन सेवा का लागि प्रतीक्षामा नेशनल सिटी हॉस्पिटल।
2: यो मोबाइलले पनि तनावै दियो भने
3: होइन, के तनाव दियो ए खुशी,
2: हेर न अस्ति भर्खर बनाएर ल्याएको फेरि बिग्रियो। होइन, मर्मत गर्ने गतिलो पसल कतै छैन?
3: छ नि, किन नहुनु, हाम्रै बेसी सहरको पुरानो ब्याङ्क चोक नजिकै रहेको जनता मोबाइल इलेक्ट्रिक पसलमा दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मोबाइल मर्मत गरिन्छ नि।
4: हामी कहाँ सामसुङ, रेडमी, भिभो, टेक्नो, ओप्पो, नार्जो, रियलमी लगायतका ब्रान्डेड मोबाइल सेटहरू पाइनुका साथै बिग्रिएका जुनसुकै ब्रान्डका मोबाइलहरू दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मर्मत गरिन्छ। साथमा इलेक्ट्रिक सामानहरू पनि उपलब्ध छ।
3: प्रोप्राइटर शम्सुल आलम, जनता मोबाइल इलेक्ट्रिक पसल बिक्री तथा मर्मत केन्द्र, भेसीसर नगरपालिका साथ लमजुङ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98495-94046 र 98134-93-332।
5: हेलो, मर्सङ्गदी FM 95 मेगाहर्ज

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी।
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने लगा।

0: समय दिवसो 3 बजे र साझा 6 बजे।
1: सब शांति से सूरज जाता तो हजारों सालों से धमकी होती है भाई। कहाँ ये सारे?
2: इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे।
3: It's time. I'm coming.
4: अन्नपूर्ण चलचित्र मंदिर बेसी शहर सम्पर्क 97497338798।